0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा?

बात तो सही है कि एक दिन जाएगा मिट्टी में, मिट्टी से आए हैं मिट्टी में जाएंगे, और फिर किस बात का इतना गुमान है, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट ये ह्यूमन नेचर है कुछ, बस जो आज है उनको बस हासिल करना है, धन दौलत शौहरत पैसा ब्ला ब्ला ब्ला, जस्ट रियलिटी इज यू गोइंग टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड. यस, काम करो, करते हैं ना, काम करना है, कर्म करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, सो वी हैव टू. बट इतना जो मरे जा रहे हैं एंड में, इट इज़ ऑल गोइंग टू स्टे बिहाइंड. दिस सॉन्ग इज सच अ ब्यूटिफुल रिमाइंडर ऑफ दैट. लेजी लम्हे पे आप निलफर के साथ ऑन ईस्ट एफ एम केनियाज प्रीमियर एशियन मिक्स. आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं, मेरे साथ रहिए. अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं कर सकते हैं ऑन 0711 046 106, या व्हाट्सएप कर लीजिए ऑन 0701 106 106.